0: सोच लिया?
1: मन से मन की डोर बंधी, जब डोर बंधी तो अमर प्रेम मुस्काया। तुम क्या सोच रही?
0: मैं सोच रही थी मन में प्रीतम आन बसे, जब आन बसे तो मन मंदिर कहला।

तो हूँ वही लल्लू लाल, इंग्लिश लेबल देसी माल, लंदन से आया मैं बन ठन के, लंदन से

0: नमस्कार श्रोते हो, हा होता आपला आजचा कार्यक्रम. मी अनघा आजच्या दिवसापुरती तुमची रजा घेते. पुन्हा भेटूयात याच दिवशी याच वेळी. तोपर्यंत ऐकत रहा रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
1: ओळख रागांची, मैफल गीतांची, बहारदार शैलीत वेगवेगळ्या रागांवर आधारित सुमधुर संगीताचा आनंद घेऊया आमच्या स्वर संध्या या कार्यक्रमातनं. सादरकर्त्या राधिका जोशी. ऐका दर गुरुवारी संध्याकाळी 4 वाजता फक्त रेडिओ विश्वासवर.
2: हरदम तलाश गैर में रहता है आदमी, दूसरे के तलाश में रहता है. कौन बहुत बड़ा आदमी है, कौन नौकरी दे देगा, कौन शादी करा देगा, हैं? कौन पैसा दे देगा. तो हरदम तलाश गैर में रहता है आदमी और डरता है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाए. अगर अपने आप से मुलाकात हो जाएगा तो कोई चीज का जरूरत नहीं.
3: देखिए मैं इनका फिर से एक जवाब देती हूँ पंडित जी. ये देखिए ऐसी महफिल नहीं होगी दिल्ली में, मैं बता दूँ आपको. सही माने में पूछ लीजिए. हाँ पंडित जी, अरे कहा बहन जी, हमें शुरू से तरसाते रहते हैं, शुरू से मेरे को तंग करते हैं. जब से मैं पंडित जी को कॉन्टेक्ट हूँ साल भर, जब तक यहाँ नहीं आ जाते मुझे तंग करते हैं पंडित जी. खैर पंडित जी सुनिए, दोहा कितना अच्छा है. तनिक कांकरी के परे नैन होत बेचैन. एक छोटी सी कंकरी अगर आंख में पड़ जाए तो कितनी बेचैनी होती आंख में. तनिक कांकरी के परे नैन होत बेचैन, तो इन नैनन को कहा कहिए जिन नैनन में नैन.
2: नैना बड़ा गरीब है, सुनिए. नैना बड़ा गरीब है, रहे पलक की ओट छिपा के रखता है. नैना बड़ा गरीब है, रहे पलक की ओट, लेकिन दाम परे चूके नहीं, करे लाख में चोट. चाह लाख को भी चोट.

बहन जी कहती हैं कि हमको भाई साहब बहुत तंग करते हैं, लेकिन हम बहन जी को तंग करते हैं कि एक बार फिर आवे हम दूसरा दादरा गाएंगे। और नैन है तो नैने पर होगा। आध्यात्मिक अर्थ है

0: अपना नहीं और जो है अपना वो नजर आता नहीं। और जो अपना सचमुच है वो नजर नहीं आता है।
1: तो बहन जी से तो हम यही कहेंगे कि एक डागरा हम और गा रहे हैं, इसमें हमें नजर पर ही सुनाएंगे। अरे तोरे नैना नैना रे तोरे। आइए।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में।
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

अपनी आवाज वाली गोपाल, तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस नहीं। हाँ आज देवी माँ से कुछ और भी मांग लेते। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बदन बाहर गाओ।

0: दे।
1: वो दिन गए जब तुम्हारा जादू सर पे चढ़कर बोला करता था।
2: जानती हूँ, पर क्या करूँ सरकार, उस मुए जोशी के लड़के ने ना जाने क्या कर दिया है। गोपी तो किसी के परवाह ही नहीं करती।
3: मलैया जाओ और नरसिंह जोशी से कहो कि अपने बेटे को समझा लें, नहीं तो हम ऐसी कमंद फेंकेंगे जिसमें बाप और बेटे दोनों जकड़े चले आएंगे।
1: जो सरकार।
4: गोपाल की माँ, अरे ओ गोपाल की माँ, अरे कहाँ भर के यह सुनती नहीं। ओ गोपाल की माँ,
2: क्या बात है जी।
4: हम लुट गए हैं, हमारा सर्वनाश हो गया है और तू पूछती है कि क्या बात है जी।
2: हाय राम, कुछ कहो तो पता चले।
4: अब कहने के लिए रह क्या गया है, ये पिछल पैरा कुंडली इसकी इधर को जाती है और वो उधर को जाता है। मैं ज्योतिष विद का माना हुआ पंडित, इसने मेरे सितारों का हिसाब भी गलत कर दिया है।
2: गोपाल की बात कर रहे हो?
4: और क्या, मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ। तेरे इस लाडले ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया और तो सब कुछ किया तो किया, अब एक नाची से इश्क भगाने लगा है।
2: चांद पर मत थूको, मेरा लाल ऐसा नहीं है।
4: बाहर निकलो तो जानो, लोग अंत शंत बातें कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब इस लड़के का हाथ गले तक ही नहीं, सर तक आ पहुंचा। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। लोग तो अब यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हें भी ब्याह कर नहीं लाया, भगा कर लाया हूँ।
2: हे भगवान, तो फिर क्या करें? लोगों की जबान थोड़ी ही पकड़ी जा सकती है।
4: हम उनकी जबान नहीं पकड़ सकते, वो भले हमारी टांग पकड़ ले, पगड़ी उछाल दे, इसने तो जोशी कुल का नाम दबो दिया है। कोई यहाँ तक नहीं टिकता, सबके सब बाप दादा और लकड़ दादा तक पहुँच रहे हैं और ये सब दोष तुम्हारा है।
2: मेरा दोष कैसे हो सकता है?
4: तुमने तो जल्दी की, अगर 2 घंटे इसे देश से जनती तो इसकी कुंडली ही बदल गई होती, लगन बदल गया।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,